0: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
1: क्या हो गया ऐसा?
0: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
1: ये कमाल कैसे हो गया?
0: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: ജനപഥം സ്പോൺസേർഡ് പരിപാടി ശനിയാഴ്ച വൈകുന്നേരം 5:02.
3: കൈതപ്രവും എസ് പി വെങ്കടേഷും ചേർന്നൊരുക്കിയ ഗാനത്തിന് സ്വരം പകർന്നത് ചിത്രയും ബിജു നാരായണനും. ചിത്രം കുങ്കുമച്ചപ്പ്.

0: ACP-NDT कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
1: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक?
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम।

0: कुछ इंतजार है इस एल्बम से। ये गजल आपने सुनी भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में। गुलशन मैदान का लिखी ये गजल थी और भूपिंदर सिंह ने संगीत दिया था।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

कुमार विष्णु और स्वरांशी की आवाजों में एल्बम सजा मेरे घर दरबार माँ से आपने सुना ये गीत। रवि चोपड़ा की रचना थी, मीट ब्रदर्स का संगीत। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह की आवाज में। ऐश कमल की रचना है, भूपिंदर सिंह का ही संगीत।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: गदर एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं इस वक्त कार्यक्रम।

ये गजल अभी आपने सुनी विनोद सहगल और सीमा शर्मा की आवाजों में, सईद राही की का लिखा ये गीत था और जगजीत सिंह की तर्ज़।

गरबा सॉन्ग एल्बम से ये गीत हमने अभी आपको सुनवाया, शिवांग माथुर और श्रद्धा श्री की आवाजें थी। रुतिका ब्रह्म भट्ट का लिखा ये गीत था, शिवांग माथुर का संगीत। तेरी में प्रेम दीवानी इस एल्बम से फाल्गुनी पाठक की आवाज में, ललित का संगीत है, नवाब आरजू का लिखा गीत।

स्वागत है आप सभी विविध भारती सुनने वाले श्रोताओं का कार्यक्रम यादों की महफिल में। मैं हूं पूजा नारायणिया, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज है संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के शंकर का जन्मदिन। आज का कार्यक्रम हमने उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीतों से सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि आज है ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में पहला गीत प्रोफेसर फिल्म से, हस्तर जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

CID फिल्म से गीत आपने सुना आशा भोसले, मोहम्मद रफी और शमशाद बेगम की आवाजों में। जहां निसार अख्तर की रचना थी, ओपी नैयर का संगीत।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
4: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
3: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
4: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
3: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,
2: कहीं बे ख्याल हो
0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

इस संदेश से पहले आपने गीत सुना आरजू फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल थे, तर्ज बनाई थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म प्रिंस से, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। हसरत जयपुरी के ही बोल हैं, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: अनाड़ी फिल्म से मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना, शैलेंद्र के बोल थे, संगीत शंकर जयकिशन का।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू, वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
2: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
3: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
5: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, और हम आपको सुनवा रहे हैं शंकर जयकिशन के संगीत पर ये गीत, क्योंकि आज है इस संगीतकार जोड़ी के शंकर का जन्मदिन। शारदा की आवाज में सूरज फिल्म का गीत हसर जयपुरी के बोल, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में हम लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर।

का स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारायणिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम की इबारत हमने फेसबुक पेज पर पोस्ट कर दी है और आप सभी ने वो पढ़ भी ली है और आपके संदेश भी हमें मिलने लगे हैं। हम आपको इबारत पढ़ के सबसे पहले सुनाएंगे और उसके बाद गीतों का सिलसिला शुरू करेंगे। तो इबारत है कुछ इस तरह, सुन रही सखी तीनों लोक की रानी के कदमों में सिर झुकाने को जी चाहता है। हाँ तो चल, काजल सजा मेहंदी लगा के दुल्हनिया बन, डोली में सवार हो चल। और देख जरा, ख्याल रखना वहां कोई भवरा बेईमान न मिल जाए जो कली कली चूमता फिरता है। उसकी उड़ती जुल्फों को देखकर कहीं पागल मन व्याकुल ना हो उठे। अच्छा, कहीं कोई मंत्र फेरा तो उस पिया संग नैना लागे तो। नाना दैया रे, पराई है, ऐसी जुस्तुजु ना कर। अरे सुन ना, हम तो उस गांव पे सदके जहां वो मिल जाए, जिसके इश्क की तोहमत उठाने को जी चाहता है। उसके इश्क में दुनिया लुटा के हम भी देखेंगे। क्या बात है, अब देखिए आपको ही बूझना है कि आज के गाने कौन से हैं। और बताइए कि इश्क जिसे तोहमत कहती है दुनिया, उसे उठाने के लिए क्यों हर किसी का मन व्याकुल होता है। इबारत के साथ हमने ये प्रश्न भी इस इबारत में डाल दिया है। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रि के बारे में ही आज सबसे पहला गीत हमने लिया है, तो शुरू करते हैं कार्यक्रम का सफर और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

सुहाग फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। आनंद पक्षी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओं, नवरात्रि का त्योहार और गरबा डांडिया की थाप ना हो, कदम ना थिरके, ऐसा कैसे हो सकता है। मां की भक्ति से सराबोर माहौल, ढोल की गूंज और रंग बिरंगे परिधानों में सजे धजे लोग, कितना खूबसूरत होता है ना नवरात्रि का ये उत्सव। तो देखिए, अब आपसे हम जो प्रश्न पूछना चाह रहे थे उससे पहले हमने गीत सुना दिया, लेकिन फिर भी हम जानना जरूर चाहेंगे आपसे कि जब नवरात्रि के आने का इंतजार आप करते थे तो कैसा उत्साह आप में रहा करता था। पारंपरिक परिधान का, गहनों का या दोस्तों के साथ गरबा खेलने की योजनाओं का। और ये भी बताते चलिए कि गरबा और नवरात्रि से जुड़ी आपकी कोई खूबसूरत याद हो, कोई ऐसा खास किस्सा हो जिसे याद करके बड़ा मजा आता है, चेहरे पर मुस्कान छा जाती है, तो हमारे साथ उसे जरूर साझा कीजिए।

अपनी सखी यानी की अपनी धर्मपत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी माता वैष्णो देवी के कदमों में फिर से सिर झुकाने को जी चाहता है। क्या बात है। तो वो कह रहे हैं कि माता रानी के भवन जम्मू कश्मीर में, जबकि अगस्त 2026 में भी हम दोनों बच्चों के साथ दर्शन करने को गए थे, तो सखी का जवाब था, आप जल्दी ट्रेन की टिकट रिजर्वेशन करवाइए, सभी को छुट्टियों के हिसाब से जाने को मिलेगा। क्या बात है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें नवरात्रि के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी है। आप सभी को भी हमारी तरफ से और विविध भारती के परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि आज तो मधुर गीतों का रेला लगने वाला है, इश्क सृष्टि को संचालित करने का छुपा हुआ जरिया है, इसके तार बस साहित्य कला और समाज से नहीं मनोविज्ञान जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान तक जुड़े रहे, इसीलिए इससे कोई बच नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समर्पण का आनंद अपने पिया या महबूब के सामने खुद को पूरी तरह लुटा देने, सब कुछ न्योछावर कर देने में जो आत्मिक सुख और सुकून मिलता है वह दुनिया की किसी और चीज में नहीं। दिल का पागलपन, इबारत में जैसा कहा गया है कि पागल मन व्याकुल हो उठे, मोहब्बत में एक ऐसा मीठा दर्द और दीवानगी होती है जहां बदनामी भी एक अनमोल तोहफा लगने लगता है। जी हाँ, एक श्रोता ने कहा है कि आज आपने रंग तरंग प्रोग्राम में बहुत ही मन को सुकून देने वाला माता रानी की भक्ति रचना को सुनाया, गरबा गीत भी सुनाए, ऐसे भक्ति पदों से हम आनंदित होते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि रंग तरंग कार्यक्रम से अब तक आप हमारे साथ बने हुए हैं और आगे भी बने रहेंगे। एक श्रोता कह रहे हैं, आखिर इश्क तो वही है जिसे दुनिया इल्जाम समझती है और दिल अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है। जी हाँ, इश्क कोई साधारण भावना नहीं बल्कि रूह की वह अनकही पुकार है जो तर्कों की सीमाओं को लांघकर सीधे हृदय में उतर जाती है। दुनिया की नजर में इश्क भले ही एक तोहमत हो मगर प्रेम करने वाले के लिए यही उसकी सबसे अनमोल दौलत है। यहां हरा कर भी जीतने का सुकून है, बिछड़ कर भी जुड़े रहने का विश्वास और बिना किसी वादे के उम्र भर किसी का होकर रहने का जुनून। बिल्कुल सही। तो श्रोताओं, अभी हमने आपसे पूछा है कि नवरात्रि और गरबा का जो उत्साह है वो आप में किस तरह बना रहता था और आप क्या तैयारियां करते थे, और कोई यादगार किस्सा हमसे आप साझा कीजिए। इस गीत के बाद हम आपके ये संदेश लेने वाले हैं। और देखिए, कुछ गीत ऐसे होते हैं जिन्हें बार बार सुनने और देखने का मन करता है। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है वो आपके लिए है ना, और साथ ही जो गीत हम आपके सामने पेश करेंगे उस गीत की अदाकाराओं के नाम हमें आप बताएंगे जो महफिल में अपनी अदाओं और अंदाजों से समा बांध देती है। आवाजों का मुकाबला हो, नोक झोंक हो, अदाओं का जादू हो, तो फिर क्या ही कहने।

मुगले आजम फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शमशाद बेगम साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आपने सुना। गीत को लिखा था शकील बदायूनी ने और संगीतबद्ध किया था नौशाद ने। देखिए हमारे श्रोताओं का जवाब भी आ गया है। हमने पूछा था कि इस गीत में जो अदाकाराएं हैं उनके नाम आपको बताने हैं, तो श्रोताओं के जवाब हमें मिल गए हैं। मधुबाला और निगार सुल्ताना, बिल्कुल सही जवाब आपने दिए हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। और हमने इस गीत से पहले जो गीत सुनाया था माँ शेरोवाली का, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न हमने पूछा उसके जवाब भी आ गए, और हम उसी जवाब को अब लेने वाले हैं, आपके उन्हीं संदेशों को पढ़ने वाले हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि गरबा की ऊर्जा और दुर्गा पूजा की भव्यता मिलकर भारत की अनूठी विविधता को दर्शाती है। एक तरफ जहां डांडिया की खनक से पूरा माहौल झूम उठता है, वहीं दूसरी तरफ शंख की गूंज और भोग के खिचड़ी लबड़ा का स्वाद मन को तृप्त कर देता है। सच कहें तो गरबा अपनों के साथ हंसने, सजने सवरने और बिना किसी फिक्र के झूमकर जीवन का जश्न मनाने का एक खूबसूरत बहाना है।

क्या बात आपने कही है, जो हमें अपनों के संग खुशियों के अनमोल पल बिताने का मौका देता है। जी बिल्कुल सही। एक श्रोता ने कहा है कि हम हर साल नवरात्रि में खंडेला के पास पहाड़ी पर चामुंडा माता के मंदिर जाते हैं, वो हमारी कुलदेवी है। साथ ही एक श्रोता कह रही हैं कि नवरात्रि से तो बचपन से नाता रहा है, अभी भी हम जुड़े हुए हैं और डांडिया का तो क्या ही कहना, फिर सजना सवरना भी तो कितना प्यारा सा है, क्या बात है। एक श्रोता तो हमें बुला रहे हैं कि आइए गुजरात और बहुत मजा आएगा नवरात्रि में झूमने का। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आने की, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रही है कि पूजा जी आप और सभी श्रोताओं को वो नमस्कार कर रही हैं। नमस्कार करते हुए उन्होंने कहा है कि इश्क छुपाए नहीं छुपता, इश्क पर किसी का जोर नहीं, लाख तोहमत लगा ले, मन करता है पिया संग नैना लड़े, जी चाहता है इश्क में दुनिया लुटा के देख लेंगे, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। उन्होंने इबारत से ही कुछ पंक्तियां उठाकर अपने संदेश में सजा दी है। और एक श्रोता ने कहा है कि माता रानी का प्यारा गीत, जो हमने इस कार्यक्रम के पहले आपको पहला गीत आपको सुनवाया, उसी के बारे में ये कह रही हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुहाग का सदाबहार गरबा सॉन्ग मोहम्मद रफी साहब और आशा भोसले की आवाजों में। और एक और श्रोता कहते हैं कि नवरात्रि के आते ही चारों ओर डांडिया और रास गरबा की धूम मच जाती है। गुजरात में माता जी की आराधना करने का ये बहुत ही खूबसूरत माध्यम है, जिसमें गरबा को माता जी का स्वरूप मानकर सभी भक्तजन चनिया चोली और घेड़िया और रंग बिरंगे वस्त्रों में सज धज कर गोल घेरा बनाते हुए गरबा खेलते हैं, बड़ा मस्त समा होता है। साथ ही हमारे एक श्रोता हैं जो हमें धुनों की जानकारी हमें हमेशा कार्यक्रम के दौरान देते रहते हैं। यादों की महफिल की समाप्ति के बाद कौन है जो सपनों में आया झुक गया आसमान, इस तरह से उन्होंने हमें जानकारी दी है। और इस कार्यक्रम के पहले कोई प्यार से देखे जादू भरे कोहिनूर, क्या बात है, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। श्रोताओं अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और साथ ही हम आपको बताते हैं कि अब जरा माहौल को बदलने की ओर हम बढ़ रहे हैं और इस नोकझोंक से निकलकर चलते हैं शादी के सपने देखने वाली दुल्हनिया के इस गीत की ओर, जहां सपने हैं साज श्रृंगार की बातें हैं सखी से बातें हो रही हैं। इस गीत की फिल्म का नाम हमें आप बताएंगे, ठीक है, लेकिन आप बताइए कि ऐसा कौन सा गीत है, ये भी साथ में बताइए, जो शादी तय होते ही हमारे मन में उभर आता है, सपने दिखाता है। और ये भी बताइए कि जब किसी भी शादी का माहौल हो तो वो कौन सा गीत होता है जो अचानक बजाए जाने पर आप झूमने से खुद को रोक नहीं पाते।

नमस्कार श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था कि ये किस फिल्म का गीत है। वैसे इस गीत को गाया है आशा भोसले ने, गुलजार ने लिखा है, राहुल देव बर्मन ने संगीतबद्ध किया है। अब फिल्म का नाम हमारे श्रोताओं ने हमें जवाब भेजे हैं। बिल्कुल सही जवाब आपने भेजे हैं, खुशबू है इस फिल्म का नाम। अब शादी के माहौल में धूम ना मचे ऐसा होता है कभी? अब ये कल्पना कीजिए कि शादी या किसी त्योहार का वक्त हो और गली मोहल्ले के गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो एक मेला सा लग जाता है ना। और ऐसे में उनसे जो दिल का नाता होता है वो हो सामने तो क्या होता है बताइए। बिल्कुल सही, शुरू होती है हंसी मजाक ठिठोली और जवाब देने की होड़, है ना, जो कि सुर और गीत के ताने बाने में बुन जाती है और बातों ही बातों में होता है दिलचस्प मुकाबला। अगले गीत की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, उससे पहले ले लेते हैं ये संदेश कि हमारे एक श्रोता कह रहे हैं, सुनरी सखी मोहे विविध भारती बुलाए, जाना है गीतों की नगरिया, करना है सुरीला सफर, चुन चुन के लाई है पूजा पुष्प गीत, विविध भारती के संग्रहालय से मत देर करो, कहीं एक ना बच जाए, हमें जाना है विविध भारती की नगरिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद। और एक श्रोता कह रहे हैं कि तेरी गलियों में जो बदनाम हुए तो क्या हुआ, कम से कम इस बहाने हमारा नाम तो हुआ। बिल्कुल, एक श्रोता कह रही है कि कार्यक्रम की बढ़िया शुरुआत सुहाग फिल्म के भक्तिपूर्ण गरबा नृत्य से, धन्यवाद। सुंदर आगाज सुहाग माँ के इस गाने पर हम सब ने गरबा डांस किया था। बिल्कुल सही, ये गीत तो है ही सदाबहार गरबा गीत। एक श्रोता ने कहा है कि नवरात्रि शुरू होते ही मैंने अपनी सखी यानी कि अपनी पत्नी से कहा कि तीनों लोगों की रानी, ये संदेश तो हम ले चुके हैं। जी हाँ, उन्होंने यात्रा की योजना बना ली माता वैष्णो देवी के कदमों में सिर झुकाने के लिए। क्या बात है, जरूर जाइएगा। और हमारे एक श्रोता ने तो हमें लिखकर भेजी है हमारे ही इबारत की कुछ पंक्तियां गीतों से सजी हुई, ठीक है। और कुछ एक और श्रोता कह रहे हैं कि इश्क वह खूबसूरत गुनाह है जिसे हर इंसान बार बार दोहराना चाहता है क्योंकि इसमें जो सुकून मिलता है वह अनमोल है। बिल्कुल, हमने इबारत में ये सवाल भी तो आपसे पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि हर दिल इस इश्क के लिए, इस तोहमत को उठाने के लिए इतना मजबूर सा रहता है ना। तो बिल्कुल, ये सुकून ही तो ढूंढ रहा होता है। आपका जवाब बिल्कुल सही है। तो चलिए श्रोताओं, अब हम इस शादी की धूम वाले गीत से आगे के गीत की ओर बढ़ने जा रहे हैं। और देखिए, इस गीत में होता क्या है, एक दिलचस्प मुकाबला। एक पक्ष कोई बात कहता है तो दूसरा पक्ष भी उसका जवाब उसी अंदाज में देता है। क्या आपने भी ऐसा मुकाबला अपने मोहल्ले, गांव या शहर में होते देखा है तो हमें जरूर बताइए।

0: नया दौर फिल्म का गीत मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे। साहिल लुधियानवी ने इस गीत की रचना की थी और तर्ज बनाई थी ओपी नैयर ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम सुरीला सफर और अब लेते हैं एक संदेश। वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। तो श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर और हम आगे बात करने जा रहे हैं। श्रोताओं के संदेश पहले लेते हैं कि श्रोता कह रहे हैं कि जब भी नया दौर का गाना ये वाला जो है बजता है तो हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो बोला करते थे कि पानी लेने के बहाने आ जा, बातें छोड़ दो और पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। क्या बात है। देखिए शरारतीपन हम लोग बचपन में बहुत दिखाया करते थे लेकिन टीचर की डांट से ही हमने सीखा कि ये शरारतें हमें कैसे और कब नहीं करनी चाहिए, है ना। एक श्रोता ने कहा है कि गरबा खेलने का शौक बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी खूब होता है। मेरी 4 साल की नातिन रोज गरबा खेलने के बहाने डांस करती है और इस नवरात्रि के त्योहार का आनंद लेती है। क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि नया दौर दिलीप कुमार वैजंती माला ओपी नैयर जी, उन्होंने इस गीत की डिटेल हमें भेजी है। एक श्रोता कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने हमें गीत लिखकर भेजे हैं जो हमारी इबारत से आज उन्होंने बूझ लिए हैं। जी हाँ ऐसे ही हमारे और भी कई श्रोता हैं जिन्होंने गीतों को बूझ लिया है और हमें लिखकर भेज रहे हैं, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता

लिखता है। ऐसे ही हमारे और भी श्रोता हैं जिन्होंने गीत की डिटेल्स हमें भेजी है, नया दौर। जी हाँ, और इसी तरह अगली जो हमारे श्रोता है वो कह रही है कि नया दौर दिलीप कुमार वैजंती माला, इस गाने में वैजंती माला जी ने जो लहंगा चोली पहने हैं वह लहंगा का चोली के डिजाइन मुझे बहुत पसंद आया। क्या बात है जी, हमें भी जब भी हम देखते हैं वैजंती माला जी को हमें तो उनका अंदाज बहुत पसंद आता है। इसे कच्छिया सिंधी कढ़ाई बोलते हैं ऐसा भी उन्होंने बताया। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब देखिए ऐसे माहौल में क्या होता है कि कभी कभी ऐसे अलबेले भी मिल जाते हैं जो शरारत करते हैं, छेड़खानी के अपने अंदाज से सबका मन बहलाते हैं। ऐसे चंचल, अलहड़ और शरारती मिजाज वालों से थोड़ा सावधान तो रहना ही चाहिए, है ना, क्योंकि वो बेईमानी भी इसी रंगीन अंदाज में कर जाते हैं। ऐसे भंवरों से तो जरा बच के ही रहना चाहिए। अच्छा आप बताइए, भंवरा जो कलियों के पास जाता है ये तो उसका व्यवहारिक काम है, क्या इंसानों को ऐसी बेईमानी शोभा देती है? अच्छा जो गीत अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसमें बात तो भंवरे की ही हुई है। ये जो एक सखी है दूसरी सखी को ये बता रही है कि इस भंवरे से थोड़ा बच के, पर तुझे कैसे बताऊं। अच्छा जो ये गीत हम बजाएंगे, बताइए इस फिल्म का नाम क्या है और कौन है वो भंवरा इस गीत में जिनका जिनका अब जिक्र आप हमसे करने वाले हैं।

हमारे श्रोताओं ने उन सवालों के जवाब भी हमें भेजे हैं जो हमने नहीं पूछे, लेकिन हमें तो आपका ये अंदाज भी बड़ा पसंद आता है। आपने फिल्म का नाम और संगीतकार गीतकार के नाम भी हमें लिखकर भेजे हैं। जी हाँ, ये था मंचली फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़ थी।

आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारी लाल का संगीत। एक श्रोता कहते हैं कि इश्क उम्र और शक्ल सूरत देखकर नहीं होता, पता नहीं चलता कि कब हो गया है। और इसी तरह से कई श्रोताओं ने हमें फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम भी लिखकर भेजे हैं, जो गीत अभी हमने आपको सुनवाया। इसी तरह एक श्रोता कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गीत है, लता जी की आवाज में बहुत दिनों के बाद सुनने को मिला यह गाना, तो अच्छा लग रहा है। हमें यह फिल्म का नाम तो नहीं पता, लेकिन हमारे श्रोताओं को अवश्य पता होगा, तो हमने अभी अभी तो नाम लिया है, अब तो आपको पता चल गया है, है ना। इसी तरह हमारे एक श्रोता कहते हैं कि उन्होंने भी ये जानकारी हमें दी है कि मंचली कली है लीना चंदावरकर और भवरा है इसमें संजीव कुमार। क्या बात है, हमने तो यही पूछा था कि भवरा कौन है, और इन्होंने बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है कि कली कौन है और भवरा कौन है। जी हाँ, संजीव कुमार इस गीत में भवरा है, जिसकी बात कर रही है लीना चंदावरकर जी। ऐसे ही कुछ श्रोता कह रहे हैं कि गरबा के गीत शुरू होते ही बच्चे तो नाचते ही हैं, बुजुर्गों के पैर भी बैठे बैठे ही मस्ती में थिरकने लगते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि इश्क के लिए दुनिया से ये तोहमत लगाती है कि जो इश्क करे वो पछतावे और जो इश्क ना करे वो भी पछतावे। दुनिया वालों के लिए मेरा तो यह विचार है कि सच्चा इश्क जरूर करें, वो भी सिर्फ एक से, जो हम सफर भी हो और मरते दम तक उसी से इश्क करते रहें। क्या बात है, बहुत ही शानदार आपने ये संदेश सबके साथ साझा किया है। इस तरह एक श्रोता ने कहा है कि फिल्म नया दौर के इस गाने तथा अन्य गानों में नृत्य निर्देशन यानी कोरियोग्राफी के गीतकार और बाद में संगीतकार बने श्री प्रेम धवन जी ने, जिन्होंने संगीतकार ओपी नैयर को अपने मुंबई के शुरुआती दिनों में अपने घर में रखा था। बहुत धन्यवाद इस जानकारी को साझा करने के लिए। अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत, जो है शरारत और बेचैनी से आगे बढ़ते हुए इश्क के उस सुकून की ओर हमें लेकर जाता है, जहां हम सच में कह ही बैठते हैं कि हाँ, नैना तो लड़ ही गए हैं। अब ये गाना तो है उमंग से भरा, प्रेम और इश्क को समर्पित। आप बताइए, इस गीत के गीत में कई सारे त्योहार और नृत्य के रूप दिखाए गए हैं, तो आप बताइए कि आपको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा पसंद है।

जी हाँ, ये गीत था गाइड फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में। शैलेंद्र के बोल थे, एसडी बर्मन का संगीत। श्रोता कह रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में। एक श्रोता कह रहे हैं कि गाइड फिल्म का ये गीत भारतीय फिल्मों में सबसे बढ़िया फिल्माए गीतों में शुमार है। लता जी की वहीदा रहमान जी का अभिनय देखने लायक है। मेरी लिस्ट का चौथा गीत शामिल हो गया है, क्या बात है। एक श्रोता ने कहा है कि वाह, ये तो मेरा पसंदीदा गीत है, अभिनेता देवानंद और अभिनेत्री वहीदा रहमान का फिल्म गाइड का गीत। जी बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कह रहे हैं कि मुझे बिना शोर शराबे वाले त्योहार पसंद है। जी तो श्रोता, अगले गीत की ओर हम बढ़े, उससे पहले आपके कुछ कमेंट्स और ले लेते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि साहिबा को कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार, धन्यवाद। नवरात्र में हम बिहार के कस्बे में बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर जाते हैं। भारी संख्या में हमारे बिहार में भी कुछ नगरों में अब गरबा नृत्य का आयोजन होने लगा है। तो इसी कई श्रोताओं ने हमसे साझा किया है इस गीत की डिटेल्स को, और साथ ही अपना नवरात्रि का त्योहार वो किस तरह मनाते हैं, किस उमंग के साथ में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं।

हमारे श्रोता कह रहे हैं कि अभिनेत्री फिल्म का ये गीत है और हेमा मालिनी और शशि कपूर इसमें अभिनेत्री और अभिनेता हैं। बिल्कुल सही जवाब। हालांकि हमने तो कोई प्रश्न ऐसा पूछा नहीं, लेकिन आप उसके बावजूद भी जब अपने जवाब इस तरह से गीत की डिटेल हमें भेजते हैं तो हमें सच में बहुत अच्छा लगता है। बहुत धन्यवाद। हमारी एक श्रोता ने कहा भी है कि मेरा भी कमेंट शामिल कीजिए। तो देखिए, आपका कमेंट भी शामिल हो गया है। आपने इस गीत की जानकारी हमें भेजी है कि ये फिल्म अभिनेत्री से गीत है। एक श्रोता कह रहे हैं कि ये सभी गीत मेरी युवावस्था के हैं। उस समय मन कोमल होता है और गीत को अपने मन में समा कर अपने आप को ही नायिका समझ लेती थी और आंख बंद कर डूब जाती थी। क्या बात है। एक श्रोता गाने का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी के गाए इस बेहतरीन गीत के लिए उन्होंने हमें धन्यवाद भी कहा है और हम भी आपको धन्यवाद कह रहे हैं हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहने के लिए। और अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश करने जा रहे हैं, सुनिएगा।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति होकर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर।

कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। मेरे सामने बैठी हैं हंसती मुस्कुराती सी आरती।
1: मंदाकिनी जी, आपको और साथ में सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार, कैसी हो आरती?
1: बहुत बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि ये समय नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, पूजा पाठ और साथ में इतना बढ़िया जो गरबा सब तरफ हो रहा है, चकाचौंध रोशनी रोशनी है, झालरें लगा रखी है, लोगों ने सजावट इतनी अच्छी कर रखी है हर सोसाइटी में, हर घर में, कि मतलब बहुत अच्छा लगता है। और जो हवन की जो सुगंध आती है ना, सच में एकदम बहुत अच्छा लगता है।
0: सबसे बड़ी बात तुमने कहा कि जो हम जब पूजा या अर्चना करते हैं, जिसे कहते हैं हम एक विश्वास किसी शक्ति को मान के जब चलते हैं और पूजा अर्चना में लीन होते हैं, तो एक अदम में शक्ति हमें प्राप्त होती है और हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं, ऊर्जावान हो गए हैं। नहीं तो जिंदगी कई बार बड़ी सुस्त सी चलने लगती है, लेकिन इन दिनों हर इंसान जो है अपने आप में एक अलग ही एनर्जी महसूस कर रहा है,
1: क्योंकि त्योहार की जो एक खासियत है ना, वो यही है कि आपको एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सी ऊर्जा से भर देता है वो। आप बहुत सारे लोग व्रत भी रखते हैं, नौ व्रत रखते हैं कुछ लोग तो, लेकिन ऐसा लगता है ना कि उनके अंदर एनर्जी की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं, बल्कि और आ गई ऊर्जा
0: बढ़ गई है। बिल्कुल सही बात कहा आपने कि 9 दिनों तक जब हम किसी तरह का उपवास करते हैं और माता को याद करते हैं, और हमें लगता है कि जो रोजमर्रा का भोजन है उसे थोड़ा सा हम त्याग देते हैं और फलाहार की ओर बढ़ जाते हैं, तो एक अलग किस्म की शांति का।
1: और हम तो यही कहेंगे आप फलाहार ही ले, बहुत ज्यादा तला भुना, क्योंकि रहता है ना कि जब व्रत है तो बहुत तली तली ऐसी चीजें बनती हैं, आलू भी बनाएंगे तो तल तल के एकदम से बनाएंगे, तो वो बहुत ज्यादा तला चीजें मत खाइए, इससे थोड़ा सा नुकसान हो सकता है।
0: कई बार क्या होता है, फलाहारी आटे की हम पूड़ियां तल लेते हैं, मठियां बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं, और बाजार में भी कई शहरों में बाजार में भी फलाहारी मिर्ची बड़े फलाहारी समोसे मिलते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई व्रत है तो इन दिनों इन्हें ही खाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने व्रत किया, उपवास किया है, तो थोड़ा सा इन चीजों से दूरी बनाए रखिए और फलाहार करिए,
1: इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे पूरे, और एक ऊर्जा भी आपको बहुत अच्छी सी महसूस होती रहेगी, तो क्योंकि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है, तभी हम इस त्योहार का मजा भी ले सकते हैं और डांडिया खेल सकते हैं, खूब मजे से गरबा खेल सकते हैं।
0: सही बात है, जो है सब तरफ जो है डांडिया की धूम मची हुई है
1: जी,
0: और बड़ा अच्छा लग रहा है इन दिनों, और अब अच्छा लगेगा हमें ये जानकर कि आज हमारे श्रोताओं के साथ हम क्या बातें करने वाले हैं।
1: तो आज हम जो विषय लेकर आए हैं वो है, पहले तो हम लेके आए हैं माता पिता से दूरी बनाते हुए बच्चे, जो आजकल ट्रेंड सा चल गया ना कि बच्चे भी जहां थोड़े से टीनेज में भी यहां तक ही आ जाते हैं, 17-18-19 साल के हुए नहीं, कि उनको लगता है अब हम अकेले रहे, अब हम क्यों किसी बंदिश में रहे, उनको लगता है माता पिता के साथ रहना यानी बंदिश में रहना, तो अलग रहने की उनको इच्छा होने लगती है कि हम अलग रहें, अपने तरीके से रहें, और बाहर हम अपना जॉब करें या कुछ भी करें, तो ये जो आज देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है। और साथ ही हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री की, उसके अंदर हम लेकर आएंगे आज बीरू बाला रभा जी के बारे में बात करेंगे, हम उनकी चर्चा करेंगे
0: जो समाज सेविका है,
1: बिल्कुल समाज सेवा में जिनका नाम है, और साथ ही हम बात करेंगे मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ कहना में हम बात करेंगे अपने ग्रामीण अंचल लोकोक्तियां, तो हम बहुत सारी जानते हैं लेकिन जो ग्रामीण ठेठ ग्रामीण वाली जो होती हैं वो लोकोक्तियां कौन सी हैं।
0: अरे तो हमारे ग्रामीण श्रोता जो हमें सुन रही है वो तो बता देंगे,
1: बिल्कुल बताइए
0: किस तरह की लोकोक्तियां बोली जाती हैं,
1: कौन से गांव में, या बहुत सारे लोगों को मालूम होता है ना कि कौन की गांव की जो लोकोक्ति है ये बहुत प्रसिद्ध है, उनको ऐसी कौन सी पता है जो बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में आप बताइए। और साथ ही हम बात करेंगे उपयोगी टिप्स की, क्योंकि देखिए त्योहार चल रहे हैं और जब गरबा होता है ना तो जब सब महिलाएं ऐसी सुंदर सुंदर लड़कियां सब इतनी सुंदर सुंदर सज के आती हैं, तैयार होकर आती हैं ना, लगता है कि सब अप्सराएं जमीन पर उतर आई हैं, तो वो उसके लिए हम लेकर आए घरेलू नुस्खे जो रखेंगे सुंदर त्वचा आपकी।
0: अरे आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलेगा, तो कैसे रखें इस त्वचा को खूबसूरत, इस पर कुछ उपयोगी टिप्स हमारे श्रोता हमें देंगे।
1: बिल्कुल बताइए आप हमें अपने, क्योंकि उनको पता है भाई गरबा में ऐसे ही थोड़ी ना अपनी शान
0: चमकती त्वचा के साथ जब हम जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है ना। तो चलिए अब एक गाना हम सुन,
1: बिल्कुल एक भक्ति भावना से भरा हुआ।

0: बहुत अच्छा गीत था आरती और माता का ध्यान तो हम इन दिनों कर ही रहे हैं। वैसे तो हर दिन माँ हमारे ख्यालों और ख्वाबों में रहती ही है ना, लेकिन इन 9 दिनों में खास अर्चना हम करते हैं। और देखिए, तुमने कहा कि आजकल जो बच्चे हैं वो माता पिता से दूरी बना रहे हैं, या उनके मन में एक समय बाद आता है कि वे अलग रहना चाहते हैं, दूर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं, तो ये चीजें थोड़ा सा माता पिता के मन को तोड़ देती हैं।
1: बिल्कुल, उनको लगता है ना कि अब हम अपने जो अपने हमारे बच्चे हमारे साथ रहे, हमारे पास रहे हर वक्त, क्योंकि बचपन से उनको पाला, उनको उनके साथ में,
0: और उनका अधिकार होता है उन पर, उनके लिए एक फर्ज बनता है, बच्चों के मन में होना चाहिए कि माता पिता के साथ हमें रहना है। और भले ही उनका विवाह हो गया है, पत्नी हो गई है, पत्नी आ गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन अगर वो माता पिता से अलग रहने का सोचते हैं तो माता पिता की जो सारी ख्वाहिशें हैं, जो बच्चों के लिए बुने हुए ख्वाब होते हैं, वो टूट जाते हैं, है ना। तो कहते हैं कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता जो है माता पिता का होता है, और ये ऐसा रिश्ता है जिसमें बच्चे की एक मुस्कान के लिए माँ अपनी थकान भूल जाती है, और जो पिता है वो अपनी परेशानियों को अनदेखा करके परिवार की खुशियों के लिए भी निकल पड़ते हैं सुबह से शाम तक। और जिस बच्चे की पहली आवाज पर माँ दौड़ी आती है, आज उसी बच्चे की आवाज सुनने के लिए माँ को कई बार फोन करना पड़ता है।
1: बिल्कुल, और जिस पिता की उंगली पकड़कर बच्चा चलना सीखता है, उम्र के एक पड़ाव पर उसी पिता को बच्चे के साथ 2 कदम चलने के लिए उससे समय मांगना पड़ता है। और कभी कभी तो घर में सब साथ में रहते हैं लेकिन बातचीत केवल इतनी होती है, खाना खा लिया, हाँ, पैसे चाहिए, भेज दीजिए, बस बातचीत खत्म। रिश्ता ऑनलाइन और भावना है ऑफलाइन।
0: बिल्कुल सही कहा आरती, आज की दुनिया पहले से बहुत बदल गई है। पढ़ाई की बात करें, नौकरी, प्रतियोगिता, महानगरों की जो भागदौड़ है, और फॉरेन में बसने की जो ये चाहत है।

0: इन सब ने परिवारों की जो जीवन शैली है उसको बिल्कुल ही बदल दिया है। पहले कई पीढ़ियां एक ही घर में रहती थी, दादा दादी की कहानियां होती थी, माँ की रसोई की किस्से, पिता की सीख और भाई बहनों की नोक झोंक और रोजमर्रा की जिंदगी का ये हाँ। हमारा हिस्सा होता था, लड़ाई झगड़ा, तू तू मैं, बच्चे भाई बहन, इतनी चिल्लपों,
1: लड़ते झगड़ते हम लोग बड़े हुए,
0: बिल्कुल,
1: और वो चीज एक अलग ही होती थी। और आज ये छोटे परिवार हैं, बच्चे पढ़ाई और नौकरी के लिए दूसरे शहरों में जा रहे हैं, ऐसे में माता पिता से जो दूरी जाती है ना, वो हमेशा भावनात्मक दूरी का संकेत नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ। आप हो सकता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए या किसी चीज के लिए जाना पड़े, लेकिन वो दूरी सिर्फ ऐसी होनी चाहिए कि हाँ आप गए लेकिन मन से दूर नहीं हुए।
0: हाँ,
1: लेकिन आजकल क्या है ना कि बच्चे मन से भी दूर होते जा रहे हैं। कई बच्चे दूर रहकर भी अपने माता पिता का पूरा ध्यान रखते हैं। आज मोबाइल पर हमारे सैकड़ों संपर्क हैं, सोशल मीडिया पर हजारों मित्र हैं, लेकिन कभी कभी अपने माता पिता के पास बैठकर 10 मिनट बात करने का भी हमारे पास समय नहीं होता।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और हम दुनिया भर की तस्वीरों पर अपनी राय देते रहते हैं, लाइक करते रहते हैं, कमेंट्स करते रहते हैं, खुश होते हैं, लेकिन माँ की बात पर सिर्फ इतना कहते हैं, मम्मी बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाद में बात करता हूँ। से बेटे
1: हाँ।
0: उनके लिए ज्यादा हम कहेंगे कि वो बात कब आता है उनका, इसका तो जवाब न तो माँ के पास होता है न उस बच्चे के पास होता है। और एक बड़ा घरों में एक आरती और बड़ा दिलचस्प दृश्य भी देखने को मिलता है कि माँ कहती है बेटा जरा मेरे पास बैठ जा, तुझसे कुछ बात करनी है, तो बेटा कहता है मम्मी 5 मिनट बस।
1: हाँ। और मजे की बात यह है कि माँ के 5 मिनट में जो माँ मांगती है 5 मिनट में चाय भी बन जाती है, 2 बार गैस बंद हो जाती है, पड़ोस की खबर आ जाती है, लेकिन बेटे के 5 मिनट में मोबाइल की बैटरी 10% और कम हो जाती है। और जब माँ पूछती है किससे इतनी बातें कर रहे हो, तो जवाब मिलता है बस दोस्तों से। माँ मनी मन सोचती है काश मैं भी अपने बेटे की दोस्ती होती।
0: हाँ, दोस्त बनते हैं माता पिता, लेकिन बच्चे जो हैं कहाँ बात करना पसंद करते हैं, सबसे बड़ी बात ये है।
1: बिल्कुल।
0: और ये बातें सिर्फ एक तरफा नहीं हो सकती। अक्सर माता पिता कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए इतना किया, अब तुम हमारी बात भी नहीं मानते। तो इन बातों के पीछे जो है उनकी चिंता है, उनके अनुभव है, सुरक्षा की भावना है, ये छुपी होती है। मगर जब बातचीत बार बार शिकायत या तानों में बदल जाती है तो बच्चे भी अपनी बात कहना बंद कर देते हैं। ये दूसरा सिक्के का दूसरा रूप है।
1: बिल्कुल।
0: तो कई बार ऐसा भी होता है।
1: जी बिल्कुल। और याद रखिए, प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन संवाद में सम्मान भी बहुत जरूरी है। बच्चों को स्वतंत्रता चाहिए और माता पिता को भरोसा। दोनों के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। हर नई पीढ़ी का अपना अपना समय होता है, अपनी चुनौतियां होती हैं और अपने सपने होते हैं। उसी तरह माता पिता के पास जीवन का अनुभव होता है जिसे अनसुना करना भी अच्छा नहीं है।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है। और समस्या पीढ़ियों के अलग होने में नहीं है बल्कि एक दूसरे को समझने की जो कोशिशें हम बंद कर देते हैं ना,
1: हाँ।
0: वो बहुत दिक्कत है। रिश्ते में दूरी झगड़े से नहीं है, जो दूरी है हमेशा झगड़े से नहीं आती है। कई बार क्या होता है, सब कुछ सामान्य दिखाई देता है लेकिन बातचीत धीरे धीरे कम हो जाती है। बच्चे अपनी खुशियों में परेशानियों में माता पिता से साझा करना उस बात को बंद कर देते हैं और घर में एक सन्नाटा सा पसर जाता है।
1: बिल्कुल। और माता पिता अपनी भावनाएं बताने के बजाय चुप रहना शुरू कर देते हैं और फोन पर बातचीत केवल जरूरी कामों और पैसों तक सीमित हो जाती है। परिवार के जो सदस्य हैं एक साथ होते हुए भी एक दूसरे के लिए समय नहीं निकालते। छोटी छोटी बातों पर संवाद करने के बजाय क्या करते हैं, वो नाराजगी होने लगती है, गलत फहमियां बढ़ने लगती हैं। और हालांकि इन संकेतों का अर्थ ये नहीं कि हर परिवार में रिश्ता बिगड़ ही रहा है।
0: हाँ नहीं, ऐसा नहीं, रिश्ता नहीं बिगड़ रहा लेकिन खुशियां भी नहीं आ रही, मन खुश नहीं रहता है, मन भारी रहता है। तो कभी पढ़ाई का तनाव हो सकता है, कभी नौकरी का दबाव हो सकता है, व्यक्तिगत परेशानियां हो सकती हैं, पुराने मतभेद भी जो है हमारे संवादों को बातचीत को प्रभावित करते हैं आरती। इसलिए तुरंत आरोप लगाने के बजाय प्यार से हमें पूछना चाहिए कि क्या बात हो गई, सब ठीक तो है ना, क्या तुम किसी परेशानी से निकल रहे हो, गुजर रहे हो, या मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। कभी कभी किसी को समाधान नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला चाहिए होता है जो हमें नहीं मिलता।
1: बिल्कुल। और इन छोटे सवालों में अपनापन छिपा होता है। दूरी को केवल किलोमीटर से मत मापिए कि वो उतनी दूर है, उतने किलोमीटर दूर है। और बच्चे दूसरे शहरों या देशों में रहते हैं, वो नियमित फोन कॉल, वीडियो कॉल, त्योहारों पर मुलाकात और स्वास्थ्य या रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखकर अपने माता पिता से जुड़े रह सकते हैं। जरूरी है माता पिता भी अपनी व्यस्तता को बनाए रखें, कि ऐसा नहीं कि बस आप खाली बैठे रहें तो फिर आपको और चिंता होने लगेगी और लगेगा कि कोई आए साथ में। तो अपने मित्रों से मिलना, रुचियों को अपनी, जो आपके शौक हैं उसको समय देना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना और अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल।
1: अपने आप को बिजी रखना।
0: लेकिन वही है आरती कि बिजी रखने के चक्कर में भी कई बार हम रिश्तों से दूर हो जाते हैं। हमें लगता है हम बिजी हैं, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। तो इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि हम अपना जीने का अंदाज खो दें या जो सुख शांति है, ठहराव भी जिंदगी में बहुत जरूरी है ना, ठहराव होना बहुत जरूरी। तो बच्चों में क्या हो गया, ठहराव नहीं रहा तो जुड़ाव भी नहीं रहा, ना, अपनी पूरी खुशी केवल उनकी अपने

0: बात पर निर्भर रहती है कि वो किससे खुश रहते हैं। तो हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी रिश्ते में डर नहीं होना चाहिए, अपमान या लगातार नियंत्रण करना, किसी को हम नियंत्रण में कर लेते हैं, कंट्रोल में करना जिसे कहते हैं, या हम दुर्व्यवहार करते हैं, तो ये साथ रहने से रिश्तों की सफलता नहीं मानी जा सकती। बल्कि एक दूसरे की रिश्तों में क्या होता है कि उनकी सीमाओं का ध्यान रखना, उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखना, ये सभी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल। और जिंदगी की भागदौड़ में हम अक्सर ये सोचते हैं कि माता पिता तो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उनकी शिकायतें, उनकी सलाह, उनकी आवाज, सब कुछ हमेशा हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। लेकिन सच ये है कि समय किसी के लिए भी ठहरता नहीं है, और बचपन में जो हाथ हमें गिरने से बचाते थे, उन्हें उम्र के साथ हमारे धैर्य और सहारे की जरूरत भी हो सकती है। और जो माता पिता कभी हर सवाल का जवाब देते थे, वो भी आज के बदलते समय में अकेलापन, असुरक्षा या अपनी उपयोगिता को लेकर चिंता महसूस कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी तरह बच्चों को भी समझे जाने का, सम्मान पाने का और अपने फैसले लेने की जगह होनी चाहिए। इसलिए रिश्तों को बचाने का केवल क्या तरीका है कि त्याग या उनकी बातों को मानना नहीं है, बल्कि संवाद करना, संवेदना जताना, प्यार मोहब्बत है ना जिसे कहते हैं न, सहानुभूति, ये सभी होना चाहिए। और बच्चों, माता पिता को भी बच्चों की दुनिया को समझना होगा, और बच्चों को भी समझना होगा कि माता पिता का प्यार केवल उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनके जीवन का एक जरूरी हिस्सा भी है। तो दोनों तरफा ये समझना पड़ेगा। महंगे उपहार देने से कभी रिश्ते नहीं बनते हैं, आपसी प्यार सम्मान देने से वो रिश्ते कायम रहते हैं। लेकिन प्यार से पूछा गया एक सवाल कि आप कैसे हैं, सब अच्छा है, मैं आपकी क्या काम आ सकती हूँ या मुझे क्या करना चाहिए, ये हमारे दिलों में जो दूरियां हो गई हैं उसे हम कम कर सकते हैं। तो हम तो हर बच्चे से, हर माता पिता से यही कहेंगे कि एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, अपने रिश्तों में करीबी लाएं, है ना, दूरी नहीं लाएं।
1: बिल्कुल। और अभी हम अपने श्रोताओं को और करीब लाते हैं एक प्यारा सा गीत सुनवाते हैं।

0: हाँ तो बहुत ही पुराना गीत और बहुत ही प्यारा गीत था ये।
1: बुझ मेरा क्या नाम रे।
0: हाँ, नदी किनारे नाम रे, क्या मतलब पुराने गीतों की बात करें तो सुनते ही रह जाते हैं।
1: मतलब अपना पूरा पता भी उन्होंने बता दिया कि नदी किनारे गाँव।
0: बिल्कुल, और हमारे भी जो श्रोता है हमने उनसे भी कहा था कि उनके गाँव में कौन कौन सी लोकोक्ति प्रचलित है,
1: है ना,
0: उसका उन्हें हमारे साथ करना भी है।
1: जी हाँ।
0: तो अभी हमारे एक श्रोता लिखते हैं आरती कि माता पिता और बच्चे व्यस्क संतान जो है उनके बीच बढ़ती दूरी का मुख्य कारण भावनात्मक अलगाव, विचारों का अंतर और संवाद की कमी है। जीवन शैली और उम्मीदें पुराने समय से काफी अलग हैं। बच्चे अब केवल आर्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानसिक शांति और बराबरी का सम्मान चाहते हैं। कई बार माता पिता बच्चों की भावनाओं को समझे बिना उन्हें नियंत्रित करने या बार बार सलाह देने लगते हैं, जिससे बच्चे हस्तक्षेप या अविश्वास मानते हैं। बच्चे चाहते हैं कि उनकी बात माने बिना रोक टोक के सुनी जाए, लेकिन कई बार माता पिता अपनी पुरानी बातों या अपने संघर्षों का हवाला देकर बच्चों की बात को अनसुनी कर देते हैं। तो माता पिता अक्सर बच्चों को यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने उनके लिए कितना त्याग किया है, जिससे नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानकर माता पिता का प्राथमिक कर्तव्य मानती है। डिजिटल और अत्यधिक व्यस्त जिंदगी, गैजेट्स और भागदौड़ वाली जिंदगी ने भी परिवार के सदस्यों के बीच के वास्तविक संवाद को बहुत कम कर दिया है।
1: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी होने के बाद बच्चे जो अक्सर है वो डिप्रेशन, अकेलेपन और एंजाइटी यानी घबराहट के शिकार हो जाते हैं। जब बच्चों को घर में भावनात्मक सहारा नहीं मिलता तो वो बाहर सहारा ढूंढते हैं और कई बार गलत दोस्तों या व्यसनों की गिरफ्त में आ जाते हैं। ये दूरी भविष्य में बुढ़ापे में माता पिता की उपेक्षा का कारण बनती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों का ताना बाना बिखर जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल बच्चों और माता पिता के बीच बढ़ती जो दूरी है वो एक आम समस्या बनती जा रही है। इसके मुख्य कारण, इसे कम करने के उपाय बहुत सारे इन्होंने लिखे हैं कि पीढ़ी का अंतर है, संवाद की कमी है, डिजिटल लत है, व्यस्तताएं हैं, स्क्रीन टाइम शेयर करते हैं, मोबाइल की लत के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से माँ बाप से कटते जा रहे हैं। और इस दूरी को कम करने के उपाय भी कहते हैं कि आप जो है बच्चों की बात को बिना बीच में काटे तुरंत बचाव की मुद्रा में आए, सुने, उनकी भावनाओं को समझें, उनकी सीमाओं का सम्मान करें, दोषारोपण छोड़ें और समय और बदलाव को अपनाएं। ये जरूरी है, तभी जाकर ये दूरियां थोड़ी सी पाटी जा सकती हैं।
1: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि जिन परिवारों में माता पिता के बीच लगातार झगड़े या तनाव का माहौल रहता है वहां बच्चे मानसिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। ऐसे माहौल से बचने के लिए वो बाहरी दोस्तों या डिजिटल दुनिया की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अक्सर माता पिता बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर या टॉपर बनने का भारी दबाव डालते हैं। उनकी अपनी क्षमता या पसंद, जैसे किसी को आर्ट पसंद है, किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, तो उसको नजरअंदाज करने और हर समय दूसरों से तुलना करने के कारण बच्चे मानसिक तनाव में आ जाते हैं और अपने माता पिता से कतराने लगते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जरूरत से ज्यादा बच्चों को कंट्रोल में करने की जो माता पिता की आदत है ना, वो भी जो है बच्चों को एक समय बाद दूर कर देती है। बच्चे अभी तो क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं, बाद में जब उन्हें मौका मिलता है तो वो दूरी बना लेते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर और संवेदनशील विषय है। अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बना लेते हैं, उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, फिर कई बार ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना जरूरी है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक माता पिता ही हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना बहुत जरूरी है बच्चों के अंदर एक विश्वास को लेकर आना। और एक हमारे जो श्रोता है वो लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली

0: में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं यानी कि कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई कोचिंग में उलझे हुए हैं और घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय स्मार्टफोन, सोशल मीडिया और गेमिंग में व्यस्त रहते हैं, जिससे आपसी संवाद जो है वो खत्म होता जा रहा है। नई पीढ़ी के विचार, उनका पहनावा, करियर के चुनाव और जीवन जीने का तरीका पुरानी पीढ़ी से काफी अलग है। जब माता पिता पुरानी सोच या पुराने नियमों को थोपने की कोशिश करते हैं तो बच्चे खुद को असहज महसूस करने लगते हैं और उनसे दूर होने लगते हैं।
1: वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हम माता पिता को दूर करके बाहर कहीं भगवान को ढूंढने जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, परंतु देखा जाए तो माता पिता ही भगवान रूप में हमारे घर में विराजमान है।
0: बिल्कुल,
1: उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा और आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है, कभी करके तो देखिए, ये लिखते हैं, है ना। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आधुनिक जीवन शैली में माता पिता और बच्चे दोनों ही अपनी व्यस्तताओं के कारण उलझे हुए हैं, घर पर भी लोग बातचीत करने के बजाय, जैसा कि अभी आपने कहा, इन्हीं विषयों पर बातचीत भी करते रहते हैं।
0: बिल्कुल, श्रोताएं जो लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे बड़ा मुद्दा है। बच्चे के पास बैठकर बातें भी नहीं करते हैं, वो अपने मोबाइल, वीडियो कॉलिंग, चैट पर ही लगे रहते हैं। माता पिता अपने अपने व्यवसाय में चले जाते हैं। हमारे यहाँ जब से पापा की मृत्यु हुई तब से भाई और बहन माँ के पास ही रहते हैं, और मतलब मम्मी नजदीक ही रहती है, कोई फोन आया तो तुरंत उसका जवाब देते हैं। हमारा तो फोन टूट गया, इसलिए बहन के फोन से ये संदेश साझा कर रहा हूँ। असल में जो इतना मतलब वो फोन बता रहे अपना, उनका गिरा तो उसका डिस्प्ले चला गया था। तो माता पिता अगर किसी के हैं साथ में तो बच्चों को उनके साथ बातें करनी चाहिए और मतलब उनको अकेले उस पर नहीं छोड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक श्रोता लिखते हैं कि माता पिता से दूरी बनाते बच्चे दिल से दूर नहीं होते, दूरी होती है वे काम के कारण, क्योंकि उन्हें अपना काम धंधा संभालना होता है, जिंदगी चलानी होती है। और एक बात है कि माता पिता बच्चों पर जरूरत से ज्यादा पाबंदी लगा देते हैं, क्या उनके जीवन के हर फैसले को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तो इसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें घुटन महसूस हो सकती है। इसलिए उन्हें उच्च विचारों से भरे पंख लगाकर उड़ने के लिए एक विशाल गगन में आजादी देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल, और माता पिता, ये हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता से बच्चों का दूरी बनाना आज के समय में एक गंभीर संवेदनशील विषय है और अक्सर टीनेज में बच्चे पेरेंट्स से दूरी बनाने लगते हैं। उनसे कुछ कहना या अपने दिल की बात शेयर करना तो दूर, वो कई बार ठीक से बात तक नहीं करते। ऐसे में पेरेंट्स काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार तो पेरेंट्स इतने चिंतित हो जाते हैं कि प्रोफेशनल हेल्प तक लेने लगते हैं। बेशक हर पीढ़ी की अपनी सोच होती है, अलग होती है, लेकिन बच्चों को समझना आवश्यक है कि उनके सबसे बड़े शुभचिंतक जो है उनके माता पिता ही हैं। और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि माँ बाप ने हमारी उंगली पकड़कर हमें चलना सिखाया, अब जब उनके कदम धीमे पड़ने लगे तो उन्हें अकेला ना छोड़ें, उनका हाथ थामकर कुछ दूर चल लेना भी प्यार जताने का बहुत सुंदर तरीका है।
1: बहुत अच्छे विचार हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद और शुक्रिया कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस विषय को उठाया और ये साबित कर दिया कि माता पिता और बच्चों को आपसी तालमेल और समन्वय रखना कितना जरूरी है ना?
0: जी, बिल्कुल।
1: तो आरती, अब वक्त है एक अंतराल का।
0: बिल्कुल, अंतराल लेते हैं।

0: हाँ तो आरती,
1: हम बात करते हैं पद्मश्री की, जो सेगमेंट हमारा है उसमें हम बात कर रहे हैं बीरूबाला राभा जी की। देखिए मंदाकिनी जी, समाज जो समाज सेवा होते हैं ना, उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती है,
0: बिल्कुल
1: है ना। और मानवाधिकार जो यानी उसके लिए कोई काम करता है ना, तो समझिए बहुत ही बड़ा वो अच्छा काम कर रहे हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: तो ऐसी ही थी बीरूबाला जी।
0: बीरूबाला जी की आज हम बात कर रहे हैं। तो बीरूबाला राभा जो है असम की एक महान समाज सेविका और मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन महिलाओं के खिलाफ प्रचलित बहुत सी कुप्रथाओं, अंधविश्वास और महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सामाजिक अत्याचारों को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था।
1: बिल्कुल। और जिस समाज में किसी महिला को दुर्भाग्य या बीमारी का कारण बताकर प्रताड़ित किया जाता था, वहां बीरूबाला ने साहसपूर्वक लोगों को जागरूक किया और पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
0: हाँ बिल्कुल, उनका जन्म 1954 में असम के गोलपाड़ा जिले के ठाकुरविला गांव में हुआ था और उनका संबंध जो है राभा जनजाति समुदाय से था। तो उनका बचपन जो है आर्थिक कठिनाइयों के बीच में बीता। जब वो लगभग 6 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन भी हो गया था।
1: बिल्कुल। और परिवार की जिम्मेदारियों और आर्थिक तंगी के कारण उन्हें छोटी उम्र में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। औपचारिक शिक्षा अधिक आगे तक नहीं बढ़ सकी थी, लेकिन जीवन के अनुभवों ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और उनके समाधान के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी।
0: हाँ, बचपन में ही उन्होंने गरीबी, सामाजिक रूढ़ियों और महिलाओं की सीमित स्वतंत्रता को बहुत करीब से देखा था। तो बीरूबाला का जो विवाह है 15 वर्ष की उम्र में हो गया था। उस वक्त 15 वर्ष की उम्र बहुत हुआ करती थी।
1: बिल्कुल।
0: और उनके पति किसान थे और उनके 3 बच्चे थे। विवाह के बाद उनका जीवन सामान्य ग्रामीण परिवार की घरेलू जिम्मेदारियों के बीच में बीता था।
1: और लेकिन एक घटना ने उनके विचारों को एकदम बदल दिया था और उन्हें समाज सुधार की

0: कि लोग इलाज कराने के बजाय झाड़ फूको इन सब चीजों में लगे रहते हैं। तो यही घटना उनके जीवन का एक निर्णायक मोड़ साबित हुई और उन्होंने तय किया कि वो लोगों को अंधविश्वास से मुक्त करने और ऐसी मान्यताओं के कारण प्रताड़ित होने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए वो काम करेंगी।
1: बहुत बड़ी बात। अक्सर लोग जो है इसी में लगे रहते हैं कि किसी तरह की जो है अंधविश्वास और कुरीतियों की बातों में आ जाते हैं और जान भी गंवा देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो असम में कुछ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कुप्रथा के नाम पर महिलाओं को बीमारी, मृत्यु या फसल खराब होने या उनके अन्य दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के लिए दोषी ठहराया जाता था। तो ऐसी महिलाओं को सामाजिक बहिष्कार और धमकियां और हिंसा का सामना भी करना पड़ता था। आरती,
0: बिल्कुल, बहुत वो उस समय का जो समाज था बहुत रूढ़ियों में जकड़ा हुआ था।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और बीरूबाला ने इस अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने लोगों को समझाया कि किसी बीमारी या दुर्भाग्य के लिए किसी महिला को जादू टोने का दोषी ठहराना गलत है और बीमारियों के लिए वैज्ञानिक सोच और उचित चिकित्सा की जरूरत है, न कि अंधविश्वास की।
0: बिल्कुल। और उनका संघर्ष आसान नहीं था क्योंकि लोगों की सोच बदलना बहुत मुश्किल होता है। कोई चीज को आप चीजों को बदल सकते हैं लेकिन लोगों की सोच नहीं बदल
1: सकती, बदली जा सकती।
0: तो बहुत ही मुश्किल था उनका संघर्ष। उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और धमकियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उन्हें भी कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी, उस कुप्रथा का नाम देने की कोशिश करी उनको, लेकिन उन्होंने अपने उद्देश्य से समझौता नहीं किया। वो गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करती रही और संकट में फंसी महिलाओं की मदद करती रही।
1: बीरूबाला ने अपने गांव में महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और मिशन बीरूबाला नाम के संगठन की एक शुरुआत भी कर दी। और इस संगठन में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, वकील और पीड़ित महिलाओं की भागीदारी रही। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या थे? महिलाओं के प्रति कुप्रथा और अंधविश्वास के विरुद्ध जन जागरण जगाना।
0: बिल्कुल। और झूठे आरोपों से पीड़ित महिलाओं की सहायता करना, जरूरतमंद महिलाओं को सुरक्षा और न्याय दिलाने का प्रयास करना, गांव में वैज्ञानिक सोच और मानवाधिकार के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का साहस देना, उनके प्रयासों से अनेक महिलाओं को सहायता मिली और समाज के अन्य लोग भी इस अभियान से जुड़े जिनकी वो सोच बदलने में कामयाब हो गई थी, तो उन्होंने भी इससे जुड़ना स्वीकार किया।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और बीरूबाला राभा ने संघर्ष की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक, जो डायन कुप्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने में योगदान दिया। कैसी कैसी कुप्रथाएं थी।
0: बिल्कुल।
1: और स्त्रियों को कितने अत्याचार सहने पड़ते थे आरती।
0: जी।
1: और 2015 में असम सरकार ने असम विद हंटिंग जो है एक्ट जो है पारित कर दिया था।
0: बिल्कुल। जो ये विच हंटिंग और प्रोहिबिशन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन जो एक्ट जो था ना, बहुत मील का एक पत्थर माना जाता है। बिल्कुल। उसकी वजह से बहुत सारी चीजों में महिलाओं को बचाव मिला कि जो उस समय उनको जान से कभी कभी हिंसा का भी सामना करना पड़ता था। और इस कानून का उद्देश्य किसी को भी डैन बताकर या कुछ कुप्रथा का नाम देकर किसी व्यक्ति को प्रताड़ित करने, बदनाम करने और उसके विरुद्ध हिंसा करने जैसी गतिविधियों को रोकना था, इस कानून का काम। और ये कानून वर्ष 2018 में लागू हो गया और बीरूबाला और उनके सहयोगियों के लंबे अभियान ने इस सामाजिक समस्या को सार्वजनिक चर्चा और कानूनी सुधार के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
1: बिल्कुल सही कहा। जब कोई कानून आ जाता है तो उससे बहुत ज्यादा जो है फायदे जो हमें दिखते हैं वो दिखने लगे उस दौरान। और उनकी प्रमुख सम्मान और उपलब्धियों की अगर हम बात करते हैं तो 2015 में उनके सामाजिक योगदान के लिए गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने उन्हें मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। साथ ही उनके कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी मिली।
0: और वर्ष 2018 में उन्हें विमेन वर्ल्ड समिट फाउंडेशन का सम्मान मिला। 2005 में महिलाओं के अधिकार और अंधविश्वास के विरुद्ध उनके संघर्ष को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क नामक महिला संगठन ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित भी किया था, नामांकित किया। और इन सबके साथ भारत सरकार ने उन्हें सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया।
1: क्या बात।
0: और फिर लेकिन 13 मई 2024 को गुवाहाटी असम में लंबे समय तक वो बीमार पड़ गई थी और बीमार रहने के बाद उनका निधन हो गया। और उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि सामाजिक परिवर्तन के लिए केवल उच्च शिक्षा या आर्थिक शक्ति आवश्यक नहीं होती है, संवेदना, साहस और दृढ़ संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सबसे बड़ी बात कि उन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की थी और आर्थिक रूप से भी वो मजबूत नहीं थी। ग्रामीण किसान के परिवार में वो उनका विवाह हुआ था लेकिन उनमें संवेदनाएं थी, साहस था और दृढ़ संकल्प की जो शक्ति थी उसने उन्हें पद्मश्री तक पहुंचाया और वो महान करने वाली महिलाओं में शामिल हो गई।
0: बिल्कुल।
1: और अब एक गीत सुन लेते हैं।
0: सुनते हैं।

0: हाँ मंदाकिनी जी, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ लोकोक्तियों की जो ग्रामीण अंचल में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है।
1: अच्छा, हमारे श्रोताओं ने लिखी
0: बहुत सारी भेजी हैं, बहुत सारी उन्होंने एकदम भर भर के भेजी हैं। अच्छा। तो हम लेते हैं श्रोताएं उनका लेते हैं कमेंट। तो लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में रची बसी लोकोक्तियां बड़ी ही बेमिसाल हैं, और यहाँ हमारे यहाँ तो डांडिया नृत्य का पंडाल लगा हुआ है। जैसे कि एक है, उन्होंने लिखा है, एक है बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, बाप ने मारी मेंढकी बेटा तीरंदाज, मतलब इस तरीके की कहावत जो रहती है लोकोक्तियां वो है। और एक मारवाड़ी कहावत है, एक हमारे जो श्रोताएं लिखते हैं कि जीना रा मर जा बादशाह रुलाता फिरे बजीर, अर्थात जब घर का मुखिया का ध्यान हो जाए तो परिवार बिखर जाता है, मतलब इसका ये कहना है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक श्रोता लिखते हैं कि मालवी भाषा में कहावतों को केवाड़ा या ओखाड़ा कहते हैं। मालवा क्षेत्र के लोक साहित्य और आम बोलचाल में इन केवाड़ों का बहुत बड़ा और समृद्ध भंडार है। मालवी केवाड़ा के कुछ उन्होंने उदाहरण दिए, जैसे कि आंदा के आगे रोणों ने अपना दीदा खोना, यानी किसी संवेदनहीन व्यक्ति के सामने अपना दुखड़ा रोकर समय बर्बाद करना है ना। एक लिखते हैं, आंदो उठे ने घर का ने कूटे, अपनी परेशानी में अपने करीबियों या स्वजनों को जो तंग करता है, और आंदो कुकड़ो घट्टी दोरो, किसी एक ही जिद या काम के पीछे हाथ धोकर पड़ जाना, और एक लकड़ी के दो बटका, यानी आपस में फूट पड़ना या परिवार का विभाजन हो जाना।
0: अच्छा, तो काफी मैं अनसुनी सुनी भी नहीं है,
1: ये हमने नहीं सुनी है। वाकई आपने बहुत अच्छी लोकोक्तियों को हमारे सामने रखा है, क्योंकि हम ये तो कुछ चीजें तो हमारे यहाँ बोली जाती है, लेकिन आपने जो अभी कहावतें लिखी है वो शायद हमने नहीं सुनी है ना?
0: जी। तो हमारे एक और साथी हैं जो लिखते हैं कि हमारे यहाँ तो

0: हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी लोकोक्तियां बोली जाती है, लेकिन ये लोकोक्ति बहुत प्रचलित है। चैत मीठी चीमरी, बैसाख मीठो मट्ठा, जेठ मीठी डोबरी, आषाढ़ मीठो डटा। इसका अर्थ है कि चैत में ककड़ी यानी चीमरी, बैसाख में मट्ठा यानी कि छाछ, और छाछ जेठ में महुए की डोबरी और आषाढ़ में महुए का लाटा सबसे मीठा और उत्तम लगता है। बिल्कुल, ये अनसुनी ये भी थी।
1: वही श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण लोकोक्तियां केवल कहने सुनने की बातें नहीं है बल्कि पीढ़ियों के अनुभवों का सार है। इनके माध्यम से बुजुर्ग बिना लंबा उपदेश दिए बच्चों को जीवन की बड़ी सीख दे देते हैं, और इनमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है, सीख भी है, और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की सीख भी होती है। बहुत सी मशहूर लोकोक्ति इन्होंने लिखा है, गई भैंस पानी में, यानी किसी काम का बिगड़ जाना या मेहनत पर पानी फिर जाना, और ऊंट के मुंह में जीरा अपन कहते हैं ना, और घर का भेदी लंका ढाए, और दूर के ढोल सुहावणे, अधजल गगरी छलकत जाए। ये सारी कविताएं जो लोकोक्तियां हैं वो इन्होंने बताई हैं।
0: बिल्कुल, एक हमारे और श्रोता जो लिखते हैं कि अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, आंबा मतलब आम के पेड़ पर समय आने पर ही आम पकते हैं, न बोलवा मना गुड़, मतलब चुप रहने में ही नौ गुड़ समाये हैं, और जाजा हाथ रलिया मणा, मतलब मिलजुल कर काम करने से काम जो है वो आसान और झड़पी होता है, नहीं तुरंत होता है, और टीपे टीपे सरोवर भराए, मतलब बूंद बूंद से हौज भरा जा सकता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ग्रामीण अंचल में बसी लोकोक्तियां अलग अलग प्रदेश की जीवन शैली से जुड़ी होती हैं। अगर गुजरात की बात करें तो उतावले आंबा न पाके, जैसा अभी आपने पढ़ के बताया था, तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने लिखी है लोकोक्ति। और देखिए हमारे श्रोता क्या लिख रहे हैं,
0: और साथ ही हमें एक श्रोता जो लिखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जो लोकोक्तियां होती हैं ये उनके यहाँ तो मतलब जो होती हैं, लेकिन जहाँ शहरी लोग हैं वो भी उनका बहुत बहुत उपयोग करते हैं, वो तो करते ही गांव वाले, और वो इतनी अच्छी और चीजों को सिखाने वाली होती हैं कि उसका उपयोग करने के बाद हम बहुत कुछ सीखते भी हैं, और बहुत सी चीजों को हम कम शब्दों में कहना सीख जाते हैं, और शब्दकोश भी होती है ये, जिससे शब्दों का भंडार हमें मिलता है, तो हमें बताया कि कैसे कैसे उसका उपयोग होता है।
1: बिल्कुल सही कहा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आगे नाथ जानवरों के मुंह में लगाए जाने वाली जो रस्सी है, न पीछे पगा से गाय बैल को बांधा जाने वाली रस्सी, ये आज भी गांव के घरों में उपयोग होता है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि घर परिवार की जिम्मेदारियों से स्वतंत्र हैं या परिवार में इनका कोई नहीं है, यानी आगे नाथ और न पीछे पगा, इनके परिवार में कोई है, कोई नहीं है, ये अकेले हैं, इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका अर्थ ये होता है। बिल्कुल नई लोकोक्ति है ये हमारे लिए।
0: और एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि गांव के चौपालों और रोजमर्रा की बातचीत में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है इन लोकोक्तियों का, और खेती किसानी और मौसम से जुड़ी हुई ये कहावतें हैं, ये लोकोक्ति हैं कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान, कृषि को सबसे उत्तम कार्य, व्यापार को मध्यम, और नौकरी को अधम या सबसे पीछे माना गया है, और इस लोकोक्ति के अनुसार। और अब पछताए होश का जब चिड़िया चुग गई खेत, घाघ ग्रामीण जीवन में मौसम और कृषि को लेकर काफी कवि घाघ की कहावतें बहुत रची बसी हैं, जब बरसेगा उत्तरा नाज न पावे कुतरा, यदि उत्तर में नक्षत्र में बारिश हो, उत्तर नक्षत्र में बारिश हो तो अनाज इतना होता है कि मतलब कुत्ते में लेकिन जानवर भी नहीं खा पाते हैं, और भैंस के आगे बीन बजाय भैंस खड़ी पगुरा, ये तो सभी जानते हैं।
1: तो बहुत अच्छी कहावतें हमारे लोकोक्तियां जो है हमारे श्रोताओं ने हमें उन नई लोकोक्तियों से परिचित करवाया है जिनका प्रयोग हम कम से कम शहरों में नहीं करते
0: हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए,
0: सुनते हैं।

0: भाई कोई माने या न माने, आरती तुम्हारी त्वचा तो बहुत ही चमकदार लगती है मुझे।
1: जी, तो हम बहुत सारे हमारे जो साथी हैं, बहुत सारे हमारे लिए नुस्खे लेकर आए हैं घरेलू, तो हम ले लेते हैं उनको। हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि कच्चे दूध में शहद मिलाकर लगाना, इससे भी त्वचा में निखार आता है। और मसूर की दाल को दूध में भिगाकर और इसको पीसकर पेस्ट कर चेहरे पर मास्क की तरह लगाएं तो उसे बहुत फायदा मिलता है। और बहुत सही लिखा है इन्होंने, ऐसा मैंने आजमाया भी, बहुत अच्छा नुस्खा आई है उनका।
0: अच्छा,
1: तो गरबा में बिल्कुल आप ही आप दिखाई देंगे, मजाक दीजिए।
0: तो मैं भी आज इस नुस्खे को
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
0: गरबा में जाकर नृत्य करती हूँ। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एलोवेरा जेल जो है, ताजे एलोवेरा के पत्ते से जेल निकालकर सीधे चेहरे पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें। त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है और नई कोशिकाओं के विकास को भी बढ़ा देता है। और बेसन और हल्दी का पैक भी लगा सकते हैं। बेसन चुटकी भर, हल्दी, थोड़ा सा गुलाब जल या दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाकर सामान्य पानी से धो लें। और ये नेचुरल क्लींजर की तरह काम करता है। लेकिन हल्दी को लगाने के बाद क्या है, हमें थोड़ा धूप में कम जाना चाहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे जो साथी लिखते हैं कि एक चम्मच फिल्टर कॉफी, एक चम्मच दही में 2-3 बूंदे नींबू के रस की डालकर अच्छी तरीके से मिला लीजिए। इस पेस्ट को चेहरे पर, गर्दन पर लगाइए, थोड़ा सा सूखने पर हाथों से मसाज करें और पानी से धो लें। त्वचा साफ सुथरी हो जाएगी। और साथ में एक और दूसरे श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि मुल्तानी मिट्टी जो बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छी होती है, मुल्तानी मिट्टी हल्दी, दूध, दही, बेसन, नींबू, पपीता, संतरे के छिलके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। इनसे कई तरह के उपटन बनाए जाते हैं, फेस पैक बनाए जाते हैं। तो इन्होंने बालों के लिए भी बता दिया कि रीठा शिकाकाई और आंवला बहुत लाभदायक होता है। बहुत अच्छे अच्छे टिप्स लेकर भेजे,
0: बहुत अच्छी बात है। तो सभी को हम शुक्रिया कहते हैं और एक आखिरी गीत और सुन लेते हैं।
1: बिल्कुल, सुनते हैं गीत।

0: तो दिल देके देखो मैं दिल तो दिया हुआ है हमने, मंदाकिनी जी को भी दे रखा है और साथ ही अपने सभी श्रोताओं को, सभी सखियों को, सखाओं को दे रखा है।
1: बिल्कुल, और तुम्हारा दिल भी हमारे पास है।
0: बिल्कुल
1: जी। तो अब इन्हीं बातों के साथ जो है कार्यक्रम सखी सहेली से मंदाकिनी जोशी और
0: आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।